जात मह ज्योत ज्योत मह जाता काल कला भरपुर रहिया तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो जिन कीती सो पर पाया कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना सो कर रहिया सोदार अगासा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सोदर तेरा कह सो कर के हा चित पह सर्व समाले

गावन तुधनो पवन पणिब संतर गावे राजा धर्म द्वारे गावन तुधनो छितकु पतलिख चाणन लिख लिख धर्म विचारे गावन तुधनो ईश्वर ब्रह्म देवी सोहं तरे सदा सवारे गावन तुधनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवतिया अंदर नाले गावन तुधनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुधनो सद विचारे गावन तुधनो जति सती संतोखी गावन तुधनो वीर करारे गावन तुधनो पंडित पढ़ अंदर की सार जुग जुग वेदा नाले गावन तुधनो मोहनिया मन मोहन सुरग मच प्याले गावन तुधनो रतनु पाए तेरे अठसठ तीरथ नाले गावन तुधनो जोत महाबल सूरा गावन तुधनो खानी चारे गावन तुधनो खंडमंडल ब्रह्मंडा कर का रखे तेरे तारे सही तुधनो गावन ज्योत पवन रत तेरे भगतर साले और केते तुधनो गावन समय चितना आवन नारक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई हैप्पी होसी जायन जासी रचन जिन रचाई रंगी रंगी पहाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखे कीता अपना ज्योतिष दी वड्याई ज्योतिष पावे सोई कर सी फिर हुक्म न करना जाई सोपत सा सहापत साहेब नानक रहन रजाई हसा महला पहला सुन बड़ाख है सब कोय केवड़ बड़ा डीटा होए कीमत पाए ना कहिया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए वड़े मेरे साहेबागा हिरकम पीरा गुणी गहीरा कोय न जाने तेरा केता केवड़ चिरा रहा सब सुरती मिले सुरत कमाए सब कीमत मिले कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई कहन न जाए तेरे तिल वड्याई सब सत सब तप सब चंगे आईया सिद्धा पुरखा ख्या वड्याईया तुदविन सदीक नैन पाईया करम मिला नहीं ठाकर हाईया आखन वाला क्या विचार सती परे तेरे पंडार जिस्तु दहत सह क्या चारा नारग सच सवार नहारा असा महला पहला आखा जीवा विसर मर जाओ आखनाओ का साचा नाओ सच नमकी लागे भूख उत भूख है खै चाले दुख सख्यो विसरै मेरी माए साचा साहेब सच नाय रहा सच नमकी तिल बुढ़ आई आख तके कीमत नहीं पाए जे सब मिलके आख

गुजरीम हला छोता हर के जन सतगुरु सतपुरखा बिनो करो गुरपास हम कीर के रम सतगुर सरनाय कर दया नम परगास मेर मीत गुरुदेव मोको राम नाम परगास गुरमत नाम र प्राण सखाय हर कीर्थ मरी रह रास रहम हर जन के बड़ पाग बडेर जिन हर हर श्रद्धा हरे प्यास हर हर नाम लय तृप्त सिमल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते पाग हिम जम पास जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुरु संगत पाई तिन धुर मस्तक लिख्या निखास तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम परगास रा गुजरी महला पंजवा काहिर मन चित वह उदम जाहर हर जियो परिया सैलप तरम जंत उपाय ताकार जक्या गह कर तरिया मेरे माधो जी सत संगत मिले सतरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सुख कष्ट हरिया रहा जनन पिता लोक सुत बनेता कोई न किस की तरिया सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन भव करिया ऊड़े ऊड़ा वैसे कोसा तिस पछे बचरे छरिया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन मह सिमरन करिया सबन धन अष्ट सिद्धान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाय तेरा अंतन पारा वरिया राग असमला छोत।

ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह है पातशाही दसवी कवियो बाच बेनती चौपाई हमारी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमारे दुष्ट से पै तुम काबो आप हाथ दे मुझे उपचारो सुखी बसे मोर परिवार सेवक सिखे सब करतारा मोर चरण ज करत कनिया सब पैरन को आज संगरिया पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ को

Kalpaye Purvisan Prakasa, Sakal Kalkya Kiyatamasa, Javanakal Devde Chayo, Adhamte Ke Avatara. आप हाथ मुझे उबरिए मरण काल का त्रास निवारिए हुजो सदा हमारे पच्छा श्री सदजू करे हो रचा राख ले हो मोह राख नहारे साहेब संत साहे प्यारे तीन बंदुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर दशकंता काल पाए ब्रह्मा अवतारा काल पाए शिव जू अवतारा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जूतियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार ताय हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तसही को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी शिव कन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मोहबत कियो कट कट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पछानत छिटी ते कुंचल अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक ही पीर पछान कट कट के पट पट की जान

कृपा हन अनुमानत महा मूर्ख छपेद न जानत महादेव कौ कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पिव आप आपनी बुद्ध है जेती वर्णन पिन पिन तुह तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कह बिद सजा प्रथम संसारम एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कही पूपा अंडज जे रज से तज कीनी उत भुज खान बहुर रच दीनी काहू फूल राजा वह बैठा कहूं सिमट पयो शंकर खैठा सिमगरी शिष्ट दिखाए चंब आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख्य भार्य सिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेच करो रण काता जैसे तुझ तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुखत भय मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कड़को एक भारतीय है ताके कालन कटन है रच्छा होए तहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टन तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहन हर हो ताके ताप तनक मै हर हो रिद्ध सिद्ध कर मौ सब होई दुष्ट चाच वह सके न कोई एक बार जन तुम्हें

बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सब राता। किल बिक सकल दहे को हरता, दुष्ट दोख ने को छय करता। श्रेयस दुज जब पै नियाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत काला। मन बांछत फल पावे सोई, दुख नत सैन ब्यापत कोई अड़िल। सुने गुंजो यहे सुरसना पावई, सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई। तुके दर्द पौ